0: मोंडे ताजी
1: वही गुए बेतला ना जाना तो सेव ताजी
0: ओ अने दूसरे ट्रेन लगे निस्तान दूसरे का
1: अने का सा हाँ नाउ यू बोमर
0: नाउ यू बोमर वही नाउ यू रोंगे बुडर की क्या
2: था क्या था
1: पिकअप पिकअप पिकअप हाँ तो नाउ यू बोमर जाऊँ आता ट्रेन लगे
0: इंटरेस्ट हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर साधारण एक हेलीकॉप्टर पास साउंड डाउन अंत वेरायटी हेलीकॉप्टर अंत
1: तुझे वेरायटी गुहे भीतर वो
0: हेलीकॉप्टर गुहे भीतर होता है हेलीकॉप्टर वो एक बहुत बड़ा नहीं ये हेलीकॉप्टर दरिया से ओइला नो बोना था दरिया से ओइला नो बोना था ना तो एक साउंड ओइला अंदर हेलीकॉप्टर सेकंड अंदर ओइला ने हेलीकॉप्टर सेकंड अंदर तो एक फील एंटर वरिया करता समय का
1: राइट
0: नरेंद्र मोदी साउंड तो करता लालू प्रसाद साउंड तो पचास करोड़ सत्तर करोड़ नब्बे करोड़ शाहरुख खान साउंड तो ना का साउंड करता तसले कोणाचे अनुकरण करते साउंड तुझे
1: साउंड साहेब कासरगोड वाला लगा ये लाते दला उले ये दोन उतरा हम खंड लगे
0: हम तो खंड
1: लगे अच्छे का डे बक्सा ने मगर ये उतरा हम लगे सो माइक का मगाचा बाबा नो अनि बहिनी नो कासरगोड वाला डे मोल्या मगा बो मगासो अंगा तो लोग बो किस्ती लोग तुम चा बुद्धियां तो तुम्ही बावर तान वड़न जाए तुम चा बुद्धियां मागणे शिकोंक जाय तस कुटुंबाचो तस सदांच तुम्ही म्हणूंक जाय हांव तुमकां आशीर्वाद दिता
0: राव साउंड मार दिसले
2: ये काले होते म्हणता मा आता या मिमिक्री पर तितले एक डिमांड ना आता लोकांक हसो कॉमेडी जाय कॉमेडी जाय
0: आता हसो लर लोक हसो जाय
2: ये त्या टाइप चे व्हरायटी आयटम होते आता सा
0: तुझे काय
2: हां वे
0: असतले आयटम
2: असतले आयटम एक नेहनो कॉमेडी म्हणून
0: नेहनो
2: कॉमेडी
1: हां आवाज ना मला लागते
2: ना हां वे ते एक आवाज तुम्ही करत गंदा करा तुम्ही आता की जाब दी जाय ये वीरप्पन मरुभूमि दर सोलो रहते हैं यार सोलो रहते हैं यार सब लोग गांव में ना हाँ माचा दिन एक बंदूक सोड़ लेते सर कहीं सिरा
0: बंदूक है हाँ
2: जालेरी तो तेरे गांव पुस्ता कैसे
0: कैसे पुस्ता
2: वीरप्पन तेरे बंदूक आनो मर बाबू ले सोड़ता टिश्यू टिश्यू अंटे टिश्यू लान तेरे गांव पुस्ता मंत्र मसाले पुरु दोष अवस्थे आलो दोस उभन गया कैसे વારે આવીને નહી તો એક પ્લેન ఆగము
1: ఫంక్షన్ అవసరం.

0: राइस बॉल
1: इस मुटली का अच्छा सांबर है
2: सांबर खाओ नीर फटला
1: वो प्लेट भी ना सामा करता है बसा है बसा बसा बसा एक ये हमारा एक मदर है ये राती ये प्लेट में निकलता है उसका रूम रूम है तुम्हारा अपने गिन ना है तो
3: हमको नहीं चाहिए
0: नहीं चाहिए रखा गिर दूसरा गाना दे दूसरा गाना दे
1: दूसरा इडली है इडली
0: हाँ इडली दे इडली
1: इडली
4: इडली को इडली से प्यार हो गई इडली को इडली से प्यार हो गई इडली को इडली से प्यार हो गई
0: हिंदी हिंदी हिंदी गाना अच्छा भाई
3: ये क्या भाई इडली का पीस गया ये क्या है
0: टुकड़ों के इडली सब पीस गया लगे
1: इडली सब पीस गया ये इडली आज सकाली रोड में लाइन में आया है मुकर दाऊ मिले के टिप्पर लोरी आया है इडली को दड़े आया इडली का पीस गया है
4: पीस मजर में केला है
1: इडली को होना इडली का पीस गया लगे पीस
0: हमको नहीं चाहिए
1: है
3: हमको नहीं चाहिए
0: नहीं थन कर रखा
1: क्या कर गए पैसे पैसे
0: हां पैसे देता हूं
1: हां पैसे देता हां दे दे दे
0: सिगरेट पीने के लिए
1: सिगरेट फटाने को जाओ जाओ उधर बंदर में इंगो है जाओ फटाओ फटाओ या बंगाली चादर मरता है हम जाय जाय मन तो मनो तंक मास रानी का लीड लिट गांग दिल तो बड़ा बने को ये
0: चितला
1: बिल गलो का सा
0: ये तंतम मुझे नंद गल जाते
3: काले टी पीटर काले टी गानिया पर गन पेटे मदर पूरा तीत सर
0: मृगालय की होटल शिफारस करता
1: हूँ एक पोता सकाल
4: पीटर फर्नांडिस फूड इंस्पेक्टर
1: विषय
4: दूसरी
1: फूड इंस्पेक्टर फूड चेकिंग अच्छा इलाज हाँ कोई हाँ देखो
0: कल मनुष्य जीवित अंदर प्रमुख कल और भी सही से पीड़ा या संसार अंदर था शुद्ध अनि बलाई के परित खंड तक दम से मनुष्य जीवित अंदर गर्जे से क्या तुझे होटल आने होटल आते फरी सारे स्क्रीन ना क्या जब लो आज काम तुझे होटल बंद करूंगा हमें सिपरात करता हूँ
1: देखो मुझा देखो मुझा देखो मुझा देखो
0: मुझा
3: बस
1: इकड़ा नंबर बस गले पटाने की आंबुलेंस ही गला पड़े तुझे पता है फोन कर पड़े

0: रेडियो सारंग 107.8 FM जय हे
1: रेडियो सारंग 107.8 FM रंग रंगदा बदक इत्ते तुलु

0: சைபினி பாவ் சைபினி ராக் ஆயிச்சா திசா போனி எக் பரோ யார் என் ஹோட்டலாக ஏவுச்ச பரி கர் தூ ஜன் ஐமோ அதுல ஹப்தாந்து டிப்பு ஜெயந்தி முன் சார் திசு ஹோட்டல் பந்த் ஆஜ புனி எக் பரோ யார் அம்ச்ச ஹோட்டலாக ஏவுச்ச பரி கர் ஆனி எக் விஷ் ஐ சைபினி ஏ ரோடாச்சா பெல்லா சைடிக்கு ஆனி ஹோட்டல் ஆசா த்யா ஹோட்டலாக கோணுச்சு வசனாத்தில்லா பரி பழை கோணுச்சு வசனாஸ்தானா மூசு ஆம்புடுனு ஆம்புடுனு தச்சி ஹோட்டல் பந்த் ஜம்ச்சா பரி கர் மக்கா மாத்திர பரோ யார் ஏவுச்சா பரி கர் தர் துக்கா எக் சா
1: வந்தவா எக் சா தே
0: தூகி
1: ஆ
0: தூ கச்சா திம்பு தாயினா
1: தூகி தான் மக்கா சா திம்பு தாயினா
0: தூ கால் சக்கால் இப்படி அங்க ஏவணும் சா பின் போய் சி தினா சனகல் லோய்மோ தூ கச்சா திங்கு தாயினா கால் மக்க சுகுளோ தீசி அக்க நாய பைசன் சோ வியாபாரனா ஐலோ யாரி ரீன் சகல ரீன்
1: அவன் பைசி தீத்தானே
0: தீத்தா மலர் கேதால தீத்தாய் ரே தூ
1: நீ கேதால தலை ரீ தீத்தானே
0: கேதால இதுல தீத்தா மன சங்கல தாயினா அங்க போய் தூ ஏ கெல்ல ஜெ லேக் போரணு போரணு தொன் சி புட்டா சோ பூக் வரலா ஏ பூக் கஜ பைசா கொண்டு தீத்தா அலே ஐலோ அலே யார் மலர் தாசோ யார் தாக்க போளோனு திக்கேஜே தாச்சே ஏக கேசி தாச்சே ஏக போட்டி தூ ஆயிலர் தாச்சே ஏக லேக்கசா ஏக தாபரா பரோட்டா தக்க அர்தோ பால்தி சாம்பார் கலந்திலாரு காவுனு பொய்சி தீம் தோசது துஜே பரிகி ஜோனி கால திஜே துக்கா
2: மக பரோட்டா தீவந்தமா
0: ஆ பரோட்டா துஜே சதான் செத்துத்தேனி பொருட்டா பொரு
2: சாம்பாரில சேடு கலமந்தமா
0: பொருட்டா சாம்பார் கலத்தா சாம்பார் எட்லா சாம்பார் பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா பொரு பொரு பொருட்டா பொருட்டா
1: மக்கா இது ஒன் பரோட்டா தி ஜாய்தே
0: துக்காய் பரோட்டா கி ஆணி தி வியே துக்கா பொருட்டா பொருட்டா துக்காய் பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா பொருட்டா தென் பரோட்டா
1: வந்தமா ஏ கால
0: தே பரோட்டா
1: பிளேட்டில் பழி
0: ஓ பிளேட்டு கிளீன் ஆமோ தக்க தூ திட்டல ஒண்ணு தத்த கால
1: மகிர்
0: இல்ல சமாதானம் காண்கியா தே பூர சமாதம் வருங்க தத்தா நீ பிளேட்டா தூ துக்கா கிளீன் ஜாய் ஜம்மு பிளேட் அவன் கிளீன் கரன் தித்தா பிளேட் கிளீன் ஜாலேமோ கிளீன் ஜாலேமோ தா பரோட்டா சமாதாலேமோ
1: சமாதாலே
0: கஸ்டமர் கேர் தே முச்சே
3: மந்தமா ஓ மந்தமா
0: ஓ
3: முட்லே அசாதே முட்லே முட்லே
0: முட்லே அசாத முட்லே அசாத
3: துக்கோர
0: துக்கோரி அசா துக்கோரி அசா
3: ஆ தி முட்லே வந்து துக்கறாக ஜைதே
0: ஏ காய் காம் நாரி முனா கபுர ஆஹா தூ அங்க அசை நீகி துக்கா ஆஜோ கர்த்தா
1: கோண் வந்தமா
0: தோ ஏது உந்திர கால அம்சே ஓடே பூரா கவுன்னு தம்பளோ கேர்னு ஆஜ தங்க சாப்பிடே அல்லே
1: உந்திர் நெய் மந்தமா தோ ஏக திவ்ய சக்தி அல்ல உந்திர்
0: திவ்ய சக்தி அல்ல உந்திர்
1: ஓடோலி சக்காலி அவன் சாம்பார் அசா நீ பிதர் ஒண்ணு ஒண்ணு
0: சாம்பார்
1: ஆ தியா சாம்பாராக்கு யோ உந்திரேவன் போடோனு லோலோன் லோலோன் லோலோன் அம்சு சாம்பாராக்கு ஆ பாசு மினுட்டா உப்பிராந்த ஊட்டம் தவுளா
0: தவுளா அம்மு
1: தவுளா தவுளா
0: தே செத்து தியா உந்திராக்கு லோவினா காத்துயினா தூக்க காலே தலை ரே தூக்க காலே தலை
4: சாம்பார்
0: சாம்பார்
4: உந்திர்
0: உந்திர் ஆ தேகி சாம்பாராக்கு உந்திர் போட்டுலோ ஐச்சா சாம்பாராக்கு தூக்கா அது லோக்கல் சோ சாம்பார் தூக்கா அது தூக்கா தூ பரபர் கோணி
1: மந்தமா
0: தூ ஜே கால
1: தூ ஓடல் மக உந்திரா தவுடேதானா ஜாய் ஜாய் சமண மார்கல்லோனே
0: தூக்கா
1: ஓய்
0: அவன் ஜாய் ஜாய் மன் சமணும் அலே சைபா தூக்கா அவன் மாறும் பிரத்யேக காரணத்துக்கு ஐங்க இருந்தா தூ எக்காவணும் பரலையா லேக் மலையார் பரோ தூக்கா மார்த்தே நீ தூரி காஞ்சி தோப்பு இது கோணி பஸ்ரதி பெட்டோ
1: பெட்டோ பெட்டோ
0: பெட்டோ தூ அந்த கால ஏர்த்தாய் மாறு மாறு மாத்தமுனி मेलो गिन
2: म्हणतामा म्हणजे बिल्ल घेतलं आलं
0: तुझे बिल्ल गि आले पोलून शिक का बिल्ल देऊन होता तुझे बरी एक ग्लास चहा कान घेऊन सगळं दिस परमोल कान घेऊन राहून चेनी तुझे बिल्ल गि तुझे बिल्ल एक 20 एक 70 रुपये झालं
2: म्हणजे पोर्चे बाकी असत नाही
0: पोर्चे बाकी आले पोलून शिक रे पोर्चे बाकी आले इसार दिता तो तुझे बरी नाही पोर्चे बाकी आले जोडणी नी तू जोडणी जोडणी जोडणीचे पोर्चे 200 म्हणा सात जातो
2: आईचे तन तू तू बरं म्हणता
0: मग पैसे नाही पैसे नाही तू बोणी कित तुका चहा दिले नाही रे मग पैसे देणार
2: पैसे नात म्हणता मा
0: नात म्हणलं कसं रे पैसे
2: नात
0: तुझे रे पैसे नसताना किती पळायत पैसे ये बुरसो तुका एक भितर चाड्डी घालूंक जायना रे तुका डॅटॉल ही ना
4: दिसतली अशी कथा
0: आज
4: येऊक जायना रे म्हाका फुल बिझी असा
0: हांव
4: वय वय फाल्यां सकाळी येता आं राव राव फोन आसा
0: फोन
4: आं जायत जायत ओके
0: ये मेलू तूं काल हांगा जावन हॉटेला जावन गेल्लो न्ही
4: वय
0: वेताना तुवें मार्गार थंयसर बसाक हात दाखयलो बस रावले तू कितें सडून
4: हांवें घेता बसा जडाचे हांव हात करपिल्लो
0: आनी आतां सांगला बरी तुजे मिमिक्री पुरो बारी बिझी खंय तूं कंडावटे प्रोग्राम खंय पयशे पयशे वता खंय
4: फुल बिझी न्ही सायबा आज दोन प्रोग्राम असा
0: होय
4: एक कासरगोड आणि पुत्तूर
0: प्रोग्राम
1: सांगले बरी तुका फिल्म आपला म्हणून खबर
4: फिल्म आपले नी पयर
0: फिल्म
4: चंडी गोरिलो
0: चंडी गोरी फिल्म तुका आपले
4: मागीर
0: कोण आपले
4: म्हणजे फ्रेंडान तिकट मेला ना सीधा पाटी आयला
0: फिल्म
4: निघाले
0: मागीर तुझे कडे आता कॉमेडी तुझे मिमिक्री आसा न्ही ते पयल्यांचे येतगी ईग नाई मुगाल उदू ईग बेक्कू कराय उदू तेतगी न्ही दुसरे काय एक्स्ट्रा वेरायटी आसा
4: म्हणजे नवे प्रोग्राम कॉमेडी आयला न्ही आता
0: मिमिक्री
4: मिमिक्री
0: काले
4: ते पट्टेला ट्रेन असो पट्टेला ट्रेन असो पट्टेला ट्रेन असो पट्टेला ट्रेन
0: असो आता करून दाखयता
4: तुम्हाला ऐका समा
1: पोरणे
0: इतले बरे ना
4: आणि तू वेरायटी असा
0: आणि वेरायटी
4: मागीर
0: ट्रेन वेरायटी
4: ट्रेन वेरायटी ट्रेन असा नी एका गुह्या भितर असो
0: गुहे सुरंगा
4: सुरंगा गुह्याच्या भितर
0: ट्रेन होता ना तसं साऊंड तू करून
4: साऊंड
0: वेरायटी
4: असा
0: गुहे भितल्यान होता ना
4: तसे येत
0: हो आणि दुसरे ट्रेनाचे निसताना दुसरे
4: आणि एक असा
0: नवील
4: बॉम्बरचे
0: नवील बॉम्बरचे
4: किती असा पिकअप पिकअप
0: पिकअप
4: ते नवील बॉम्बरचे आता खेळ ना काय नवील एका गुहे भितर वसून बॉमर
0: पुरो गुहे
4: ऐका
0: वेरायटी केला जाणार तुझे वेरायटी वेरायटी पुरो ऐकता ना माका एक इंटरेस्ट आयल्या बरे जाता हांव पहिले पुरो मिमिक्री करून आल्लो न्ही हांव एक मिमिक्रीचो पिसो
1: पळयताना तू केलता
0: काळे
1: पिसो म्हण
0: एक काळे मिमिक्रीचो पिसो म्हणल्यार हांव म्हजे एक आयटम असा तुम्ही हेलिकॉप्टरचे साऊंड ऐकून पुरो
4: हेलिकॉप्टर
0: तसो एक साऊंड हांव केन्ना घेता आता पयसो जावन एक हेलिकॉप्टर येता पयसो जावन येऊन असे पास जाऊन होतले हेलिकॉप्टर साऊंड सम ऐक का जाता ट्राय कर असे एक साधारण एक हेलिकॉप्टर येऊन पास जाऊन असो एक साऊंड जाऊ ना आणि तू वेरायटी असा हेलिकॉप्टरांत
1: तुझ्या वेरायटी गुहे भितल्याची
0: ओ काय हेलिकॉप्टर गुहे भितल्यान होत आहे तू हेलिकॉप्टर वयर मोलपल्यान हे हेलिकॉप्टर दर्याच्या वयल्यान उभं होता दर्याच्या वयल्यान उभं होता ना तसं एक साऊंड वयल्यान दे हेलिकॉप्टर सकल्यान दे वयल्यान हेलिकॉप्टर सकल्यान दे तसं एक फील यांच्या बरे हांव करता समायक का
4: जाय
0: सकल डेरियो सकल डेरियो
5: पडले
1: साऊंड तसेच
3: म्हणतामा ओ म्हणतामा
0: ओ
3: त्यानं पाऊस आयलाय पाऊस
0: पाऊस गणसो पाऊस ना बा पाऊस येऊ ना
3: मग तू आला पाऊस येते
5: ये तुझ्या आता तू काले हे प्रकरण खबर ते काले अनुकरण काले
0: आता कॉमेडी पुरा नवे नवे आयटम आयला आणि तू आमच्या मिमिक्रीन आता पहिल्यांचे साऊंड करचे नी आता ओढल्या ओढल्या मनशांचे साऊंड अनुकरण करून दाखवतात आम्ही पोरू एक ऐकलंय आमच्या नरेंद्र मोदीचं साऊंड तो करता मयूर बहिणू आणि आमच्या लल्लू प्रसादचं साऊंड तो करता 50 करोड 70 करोड 90 करोड म्हणून सांगू आणि आमच्या शाहरुख खानचं साऊंड काही तो ना काकाशी हात धरला आणि असे साऊंड करता दिसले काही कोणाचे अनुकरण करचे साऊंड तुझे
1: माझं साऊंड असा
0: कोणाचे
1: आमचं बिसाईब असो
0: आमच्या बिस्पास
1: आमचं बिस्प कासरगोड वराडा गेला झाला उलेली दोन उतरा करून दाखयचा
0: आमच्या बिस्पास
1: त्याच्याकडे बॉक्साने मागून हे उतरा दाखयचा स्वाम ऐका
6: मगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो कासरगोड वराड मोल्यार मका भाऊ मगासो हंगाचो लोक भाऊ किश्ती लोक तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही भावार्थान वाडोंक जाय तुमच्या भुरग्यांक मागणें शिकोंक जाय तर्स कुटुंबाचो तर्स सदांच तुम्ही म्हणोंक जाय हांव तुमकां आशिर्वाद दिता
0: राव साऊंड मात्र दिसणी
5: ये काले गोते म्हणतो आता या मिमिक्री पुरा तितले एक डिमांड ना आता लोकांक हसूंक कॉमेडी जाय कॉमेडी जाय
0: आता हसू हाडल्यार लोक आसा हसूंक जाय म्हणजे
5: त्या टाईपची व्हरायटी आयटमचे कडे असा
0: तुझे कडे असतल आयटम
5: असतल आयटम एक नॅनो कॉमेडी सांग म्हणून
0: नॅनो कॉमेडी
5: लहान
1: नॅनो मला धाकटे
5: ते एक हा तुमच्या मुखार करून दाखयता तुम्ही आता काही जाब दिशे वीरप्पन मरुभूमीतल्यान सोलोणे असलो सगळो गमेला ताच्या हातीन एक बंदूक सोडल्या दुसरं काहीच ना
0: बंदूक
5: जाल्यार तो त्याचे गम फुसता कशे वीरप्पन ताची बंदूक काढणं म्हण बागुले सोडता टिश्यू टिश्यू आणि ते टिश्यू काढणं तर त्याचे गम फुसता म्हणता मसाने पुरु दोष बसते आलो राव कॉमेडी म्हणता बरं दोसे बसते आलो एक तुबटी एक दोसे उभून गेलो कसे वारे आयले नी तो एक प्लेन दोष लावून
0: प्लेन दोष
5: आणि माझ्याकडे आमचं दविदा मसाने दविदा पोरू वडल्या रानांतल्यान वेते असा एकलो तू एक तुपटी एक वाघ मुखार आयलो वाघ दाविदाम भियो ना दाविदामान पर्स काढले आणि 1000 असून नोट वाघाक दाखवलो
0: नोट वाघाक
5: नोट पळयलो तू वाघ गुण पिडचा
0: वाघ दवलो
5: दवलो कित्याक कित्याक वाघाक केले दाविदाम चिल्लरच काही नाही म्हणून
0: चिल्लर चिल्लर नोट तसे बरं सावळे सर आता हा एक तुमच्या दोघांडे सावळे सर तुमकां इल्ले इंग्लिश येता दिसता
1: तुम्हाला
0: एक शब्द कोंकणी हा तुमकां सांगता तो तुम्ही इंग्लिशांत करून म्हाका सांगया तितलेच
5: सांगी सांगी ते म्हणा ते सांगी
0: एक अविवाहित सली पोंदाक उभी रावला एक अविवाहित सली पोंदाक उभी रावला इंग्लिशांत सांगा इंग्लिश
5: कसं जाईनातले
0: अविवाहित सली
5: मिसअंडरस्टँडिंग
0: त्याने दोघ येतात
1: मला एका फंक्शन हा कसं असा टाइम
5: ते कोण सांगले बरी
0: कोणी दोघ जण येतात कोणा लोडच येणार का बसा बस बस बस
5: बंगाली बरी दिसतात पळताना
0: बंगाली
7: बाई काने केलो के आहे
0: काने काने
5: हिंदी हिंदी
0: हिंदी हिंदी मग येतात हिंदी हा टीव्ही पुरा हिंदी मस्त पळला बाई और बहिणो काने खो परोटा है डोसा है, इडली है और मुटली है।
1: मुटली?
0: मुटली नहीं, मुटली नहीं, मुटली, मुटली, मुटली, मुटली,
5: मुटली। राइस बॉल, राइस बॉल,
0: राइस बॉल। इस मुटली का अच्छा सांबर है।
5: सांबर का उंदीर पोडला है।
1: बोले? परोटा दे दो भाई।
0: परोटा दो। परोटा, परोटा, पर पर परोटा, परोटा, परोटा, परोटा, परोटा, परोटा, परोटा। काओ काओ।
2: ये क्या भाई?
0: परोटा, परोटा।
2: प्लेट में देखो।
0: क्या?
2: क्लीन है ये प्लेट?
5: प्लेट क्लीन ना की?
0: वो प्लेट क्लीन ना। सामा करता है, बसा है, बसा, बसा, बसा। ये हमारा एक माजर है। ये राती ये प्लेट में नित्ता है। उसका लो लो है। तुम्हारा प्लेट क्लीन लाए। काओ
1: हमको नहीं चाहिए।
2: नहीं चाहिए ना कागी धंका।
5: दूसरा गाना दे दो, दूसरा गाना दे दो।
0: दूसरा इडली है, इडली।
2: हाँ इडली दे दो, इडली,
0: इडली। इडली को इडली से प्यार हो गए, इडली को इडली से प्यार हो गई, इडली को इडली से प्यार हो गए। हिंदी हिंदी हिंदी गाना।
2: क्या भाई?
1: ये क्या भाई? इडली का पीस गया, ये क्या?
2: टुकड़ों टुकड़ों गए।
5: इडली सब पीस गया, पीस।
0: इडली सब पीस गया। ये इडली आज सकाली रोड में लाइन में आया है। मुकर था उन्हें एक टिप्पर लोरी आया है, इडली को दड़ाया है, इडली का पीस गया है।
5: इस मजरन केला है।
0: हमको दिला रही पाओ ना, इडली सब पीस गया गई, पीस।
2: हमको नहीं चाहिए।
0: है?
1: हमको नहीं चाहिए।
0: नहीं?
5: थंका ना कागी।
0: ना कागी? पैसे पैसे।
2: हाँ पैसे देता हूँ,
0: पैसे। हाँ पैसे देता। हाँ दे दो, दे दो। इधर
2: सिगरेट पीने के लिए।
0: सिगरेट पटाने को जाओ, जाओ उधर रंधन में इंग्लो है, जाओ बैठो बैठो। या बंगाली चादर मान जाए नहीं, आमिर जाई जाई मुन संगनो तंक मास जराने के लीड लित गल दिल्ली क्या दाला पुनी एक बोटी ये मचे
5: चिंतला
0: आता है तंक उन्नो बिल गलों का सा
2: ये मतलब मुझे इधर तुम गल जाए थे
1: खा लेते बितर खा लेते गाने था गान पेटे मजर पूरा ते इतना साथ
2: मृगालय की होटल की
0: कोंकणी
1: फिर
0: कोंकणी हिंदी आमच्या कोंकणी लोकागच आज सारखी कोंकणी गलित ना ये बोले बंगाली जंगे उन कोंकणी बोले जाते
1: कितले आम्ही अंगा चिस आम काय कोंकणी आता
2: आम्ही कोंकणा जस तुझे होटल आज तो बंद करूंगा सिफारस करता हूं
0: ते संगो गु तुम्ही कोण
2: आम्ही
0: एक फोटो असा काले
5: पीटर फर्नांडिस फूड इन्स्पेक्टर मोंतमा
0: काले
5: विषय दुसरी
0: काले
5: फूड इन्स्पेक्टर फूड चेकिंग आयला
0: फूड चेकिंग
5: हां
0: ओई
5: हां
0: देवा
2: कण मनुष्य जीवित प्रमुख कणवरवी जैसी पीडा या संसारांत येता
0: देवी देवी
2: शुद्ध आणि भलायके भरीत कणक चमचे मनुष्य जीवितांत गरजेचे तुझ्या हॉटेल आणि हॉटेलाचे परिसर क्लीन ना आज जाऊन तुझ्या हॉटेल बंद करूंग आम्ही शिफारस करता
5: ते बरे झाला
0: देव मजा गेले मुरे सगळे गेले मु
3: इकरा नंबर
0: बस गेले त्याच्या पटला आमलेन्स गेला पळे तुझ्या बापा फोन कर पळे।

0: निकल के नंदुलर रेडियो सारंगुनाट 7.8 एफएम इंचिपा कुदमुल रंगराव पुरभवना मुल्पा तुलु कूटा रजिस्टर कुडला उन्देता बंगार पर्पदा लेसिड आई लेसा द वॉइस ऑफ ओशन बेंगलुरु मुकुल नडपाद कोरना पदरंगित कार्यक्रम दा कडे तयके
1: तुलुता सुरुत सिनेमागु सुरुता पद बरेनारे बोजा सुवर्ण एंबेरे बोजा सुवर्णरे बर नंजीना इंपु तंपु स जगे उ स्वर्गय अंद पंपन पदन एच एम महेश ला बुक वाणी जयराम ला पदन सुरुत सिनिमद सुरुत पद पदन पंतेर इते नम दुंबगु प्रकाश पावंजे बुक शीला पाटील मकलु पणंदुलेरु

0: लकी स्टार
1: हीरो हैंडसम हीरो रेबल स्टार।
2: आप सुन रहे हो रेडियो सारंग 107.8 FM।